बेटा कुर्बानी का जानवर बहुत पहले से लेकर आना चाहिए ताकि उससे मोहब्बत और उनसियत कायम हो, और फिर जब हम उस पर छुरी फेरें तो हमारा दिल दुखे, और जब दिल दुखेगा उसकी मोहब्बत में तो अल्लाह के यहाँ कबूल होगी।

0: दे, इट्स लॉट ऑफ वर्क. घी में डंडा दे, जोर से डंडा दे, प्यार से डंडा दे, इट्स लॉट ऑफ फन. घी में डंडा दे, जोर से डंडा दे, प्यार से डंडा दे, इट्स लॉट ऑफ वर्क.
1: अरे अरे अरे,
0: घी में डंडा दे, जोर से डंडा दे, प्यार से डंडा दे, इट्स लॉट ऑफ फन.
2: भाई डंडा तो बहुत लिया, ये बता दे ताई का है.
3: Messy quibble is Guyanas.
4: A time check for you in beautiful Guyana is 6 hours 10.

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: For more entertainment, log on.
1: I love you. I love you. Kiran.
2: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का.